0: जय
1: पा पिताजी टुडे आई योर सन दुवतात इन अवधि इन रामचरित मानस मीन्स सन इट मीन्स फ्रेंड इन दिस ट्रांसलेशन हियर इट मीन्स सन दैट आई योर सन आई हैव बिकम विक्टोरियस टुडे Why? Punya Prabhavo. Because of the many great deeds and the many great things that you would have done.

ओंकाय नमः च मनसिन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं पडस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरि ओम। ओम नमो परमात्मने नमः। फ्रेंड्स, वी मस्ट सी द प्रेजेंस ऑफ भगवान इन ऑल एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस जर्नी विथ ग्रेट विजन एंड स्ट्रेंथ एंड करेज। एंड जस्ट लाइक अवर फोर पेरेंट्स, अवर एंसेस्टर्स हु ऑफ कोर्स बिल्ट रिलेशनशिप्स, सो टू we will forge ahead through strength and unity. Turn to those to the front, to the side, to the back of you. Tell them Sitaram. If you're standing with your loved ones, give them a hug. Tell them how much you love them. We pray together, everyone. See.

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।
1: हाँ हो सर, एक सेकंड, मेरी थोड़ी सी, अच्छा मेरी फरमाइश सुन ले जरा। बिल्कुल ताजा गजल, चंद मिनट जिम्मत दूंगा।

0: शताब्दी मंत्र
1: ॐ सम्मा सिञ्चन्तु मरुतः सम्पूषा सम्बृहस्पतिः।

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।
1: जय श्री राम। मल मास और अधिक मास, ऑल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास, इज द एस्ट्रोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल मंथ इन द हिंदू कैलेंडर, प्राइमरली बेस्ड ऑन द साइकल्स ऑफ द मून। द लूनर मंथ इज अराउंड 29.5 डेज and the solar month is 30 to 31 days. As such, a solar year is made up of 365 days and the lunar year amounts to 354 days. A gap of 11 days increases each year, giving rise to an extra month every 3 years. Nirnay Sindhu outlines, Asankranti Maase Adhika Maase Sputaha Syad. The month that does not carry a Surya Sankranti is called Adhik Maas. Since the 13th month was not assigned to any Deva, Lord Vishnu assigned Adhik Maas to himself, hence the name Purushottam.

हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: रिकी रामलगन विथ यू, एंड इट्स योर सुंदर सपना. 102.7 FM.

जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़।

जय सबको सीताराम, सबको सीताराम, जय सीताराम। माय डियर फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम ऑफ कोर्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एज जय रिमार्क्ड, ऑफ कोर्स दिस इज द फोर्थ ऑफ फाइव इवनिंग्स ऑफ तीर्थ यात्रा दैट इज हेल्ड टू मार्क द 181st anniversary of the arrival of our forefathers to this wonderful land. And so I know he would have done the initial welcome. It's my pleasure to welcome all of you this evening to the President General of the Sanatan Dharma Mahasabha and His

कोति विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सुकृत को लहे। श्रुति के कथन कहते हैं, श्रुति स्क्रिप्चर्स डिक्लेयर, करोड़ को बैर आयु को कोई एक सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करता है। अमंगस्ट थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज इन दिस वर्ल्ड, वन मे बी वन विल बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट डिवोशन इन हिज हार्ट टुवर्ड्स डिफीट ऑफ श्री राम। और करोड़ के ज्ञानी को एक जीवन मुक्त होते हैं। देयर विल बी थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ सीकर्स ऑफ ज्ञानीज ऑफ दोज हु वर्शिप द लॉर्ड, कोई एक जीवन मुक्त है, बट मे बी वन विल फाइंड गॉड बिकॉज ऑफ द सिंसियरिटी एंड द प्यूरिटी ऑफ डिवोशन। कबीर यूजेस अ ब्यूटीफुल सेइंग, चलती चक्की देख के दिया कबीरा हो, दो पातन बीच से सा कुछ बचा न कोई। यू नो एक वाला जाता लॉन्ग टाइम इन ग्राइंड इन इस ग्राइंड जाता, सो दे गो ट्रोडे मसाला सीड इन साइड यू व्हाटएवर दे ग्राइंड इन एंड दे गो टर्न इट स्पिन इट एंड दैट जाता दे ऑन अ एक्सल ना, ये एक्सल लोकेटेड इन द मिडल, सो व्हाइल ही ग्राइंड इन मोस्ट ऑफ इट गो गेट द सीड्स विल गेट ग्राउंडेड बट वन और टू विल फॉल इन बिटवीन वेयर द एक्सल इज। Now when you pick it up to clean it, you will see those. Kabirdashi says, those little seeds that fall within that space there and they remain by the axle, they become the devotee of God. That's why he says, Chalte chakke dekake yihava apana loa suvet diya kabira hoi do patan beech se, between the heaven and the earth, do patan se uske beech mein hai, in the middle of that is located one devotee. So Tulsidashi says very much the same, that such is the grace of Bhagwan Shri Ram. He Deva Deva Mahadev Ji, iske sabke praniyo ko durlabh ho jo garv ko maya sarvart mukt Ram Ji ki bhakti ko leen ho. If one wants, of course, to get the grace of Bhagwan Shri Ram, garv, what is